जिन श्रिया तिने सुवारिया पूरी कोई करामात आप सृजन हार तारिया सिखी अत संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथाह अतुल तू तेरा अंत ना पारा वारिया जिनी तू सेविया पाओ कर से तुद पार उतारिया

तेरा तन सो तेरा थान है, सच तेरा पैश करया, नानक तू लहना तू है, गुर अमर तू विचारया, गुर डिठा ता मन साधारया, सो कहो तल गुर सेवी है, ऐनिस सहज सो पाए, दर्शन परसें गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए।

परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र हजूरी अंदर आप जी हफ्तावारी दीवान अंदर हाजरी भर रहे हो। आप जी नू गुरमुखां ने बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु नानक साहिब जी दे पवित्र बचन कीर्तन विच सरवण कराए ने। सेवा करे सो चाकर होए जा हजूर दा बचन असी सरवण कीता। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए असी चंगे नहीं ते शायद किन्ने संसार विच मैनू बुरा कोई नजर आउंदा।

जड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती।

नानक दर सरिता परम सम्मान योग जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों अज धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज उन्हां दा प्रकाश दिवस आप जी मना रहे हो। अमृत गुरबाणी दा कीर्तन आप जी ने बड़ी भावना श्रद्धा नाल गुरमुखां तो सरवण कीता है। आओ आप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी दी टेक लैके बैठे हो। सतगुरु जी दे पावन पवित्र इतिहास और गुरबाणी दा जो सिद्धांत है इस दी विचार आप संगत दे समक्ष अर्ज करनी है। एकाग्रता दी दात बख्शो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह आप ही सिर ते मेर भरिया हाथ रख के भावना नाल अपने पवित्र बचना दी विचार आप ही करा लवो। करो कृपालता गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी अमृत गुरबाणी विचों भाई साहिब जी खुरां ने कीर्तन दी समाप्ति ते जो अमृत बचना दा कीर्तन सरवण कराया है धन गुरु अमरदास महाराज हजूर दे मुख तो उचारण कीती हुई अमृत बाणी राम कली राग अंदर आनंद साहिब दी एक पौड़ी का कीर्तन आपने सरवण कीता है। ते अक्सर ये पाठ आप जी अमृत वेले सरवण भी करदे हो पर धन गुरु अमरदास जी ने कृपा करके इस पौड़ी विच तीन बचन कहे। पहला बचन ते कीता ने के आओ इकट्ठे हो के अपने सतगुरु जी दी पवित्र गुरबाणी नू गायन करिए। शब्द वरते है सच्ची बाणी नू ते नाल कृपा कीती भी जदों कोई सच्ची बाणी नू गाएगा अपनी रचना दे नाल इस तो तुल इस तो उच्ची होर कोई बाणी नहीं ते जदों भावना नाल इस गुरबाणी नू कोई गांदा है ते गुरबाणी सुन नाल गाउण नाल ओदे खिरदे नूं अमृत दी दात मिलदी। शब्द आपने सरवण कीता है आवहो सिख सत गुरु के प्यारे हो के आओ प्यारे गुरु के सिखो इकट्ठे होइए ते नाल फिर कहन लगे गावो सच्ची बाणी इकट्ठे हो के उस करते दी उस निरंकार दी इलाही बाणी नूं गाओ सच्ची बाणी नूं गाओ। ते शब्द वरत्या बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। हुण जदों इत्थे शब्द आ गया कि बाणिया सिर बाणी बाणिया बहुवचन सारिया बाणिया विचों सिर दा अर्थ श्रेष्ठ श्रोमणी कहन लगे सारिया बाणिया विचों श्रोमणी जो श्रेष्ठ है वह गुरु की बाणी। बाणी का आखरी अर्थ वैसे हुंदा है आवाज। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ने कहा भी एक बाणी हुंदी है सच्ची ते दूसरी बाणी ने शब्द वरते है कच्ची।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਚੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੀ, ਕੱਚੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ

जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी इवार, करत ना लागी बार। परम सम्मान योग चवर छत्र दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर शोभाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, अज किन्ने भागां वाले ओ शरीर ने जेड़े मेरे धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर ए जो ईसवी सन है इस दे 1998 दा ए साल इनू बस डेढ़ घंटे बाद पौने दो घंटिया बाद आपां अलविदा कर देना है। ते उस 1999 नूं जी आया कहना जिसका खास करके सिख जगत के अंदर बड़ा चा ते उमा। दो पक्ष ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी अंदर, अज ओ भी लोग होणगे जिहड़े नशे विच गुट होणगे, जिहड़े नच टप रहे होणगे, पर कुर्बान मेरे गुरु नानक साहिब तेरे तो लोग इस वकारां दी अग विच सड़ रहे ने। मेरे साहब तू अपने नूं बांह दे के इस अग विचों बाहर कढ ले। हजूर ने बाणी विच क्या अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बांह पकड़ सतगुर निस्तारा। कुर्बान जाइयो उस गुरु तो जिन्हें सानू बाणी दित्ती, जिसने कृपा करके सानू साध संगत दित्ती, जिस गुरु जी ने कीर्तन दी दात दित्ती, नाम दी दात दित्ती। ते गुरु रामदास जी ने इसे समय नूं तक एक गल कही सी कि गुरु कोल भी केवल ओह बह सकदा है जिदे अंदर सच्यार अंदर कोई सत दी कणी है, जां जो गुरु नूं इश्क करदा है। ते उत्थे तां ही हजूर ने कहा सी कि कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। गुरु मेहरामत करे मैं अर्थ कर रहा अपने उस प्रसंग नूं। वैसे मैं अज कुछ लाना अगे तोरना जो पिछले कई दिनों तो इस स्टेज तो आपां गुरु कलगी वाले दा पुरब मना रहे हैं। गुरमुख प्यारे प्रबंधकां वल्लों हुक्म भी सी कि जदों गुरु गोबिंद सिंह जी दा पुरब आवे ते उस सरबंस दानी दियां रज के कथा कहानियां कीतियां जां। खास करके मेरे बुजुर्ग बैणीवाल साहब उन्हां वल्लों ए मैं हुक्म कह सकना उन्हां तो छोटा वा, आओ उस गुरु दियां भी आपां बातां अज करनियां ने जिथे अज 99 दा ओ साल भागां वाला आ रहा है। अज तो 300 साल पहलां आनंदपुर केसगढ़ साहिब जिथे अज साडा तख्त है, उस पहाड़ी दी चोटी ते खलो के हजूर ने हिंदुस्तान दे उच्च जातियां नूं ते जालम हाकमां नूं एक गल कही सी, जां की जात गोत कुल माही सरदारी ना भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। इसे वक्त ही मेरे साहब ने कृपान कढ के पहाड़ी ते कहा सी कि कदी समा आवेगा कि रत्न के संग रंक लड़ाऊं, शेरों के संग भेड पढ़ाऊं। कहन लगे सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ध्यान रखना ए आवाज अज तो 300 साल पहला आनंदपुर दी धरती तो उठी ते उस आवाज नूं कोई दबा नहीं सकिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा करन 99 आपां तकने पया इनू जी आया कह रहे हैं, पर प्यारियो ए 300 साल तकने हैं, 400 साल शायद साडे विचों कोई तके। ते आए साल जां ए समां तां ही सफल है जे किते गुरु गोबिंद सिंह दे चरणां विच अज अरदास कर दिए कि मेरे दातिया तेरा एक 300 साल

भाई साहब भाई मनी सिंह ने जो उस वक्त लिखे है मैं उन्हां दी लिखत मुताबक इन्हां दा जीवन आरंभ कर लगा। कहन लगे 12 साल की उम्र विच इस दा नाम पूरा सी भाई बूढ़ा। 12 साल की उम्र विच बाबा जी मझां पहचारदे सन ते गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना जी इन्हां नूं मिले ने। कहिंदे ने पता नहीं की पूर्वले भाग जागे बाबा बुढ़ा जी ने 12 साल की उम्र विच गुरु नानक जी दे दर्शन पाए। आप जी ने साहब दे चरणा विच नमस्कार कीती मत्था टेकिया ते उस वक्त सतगुरु के बचन सुन के गुरु की बाणी सुन के दुध लिया के भी भेट कीता ते चरण पकड़ के कहा बाबा एक कृपा कर तेरे चेहरे नू दर्शन कीतिया सुख मिले है तेरे बचन सुनिया अंदर नू सकून मिले है कोई एहो जिहा शब्द एहो जिहा बचन मैनू सुना दे मेरा जन्म मरण कटिया जाए। कहिंदे ने उस वक्त मेरे गुरु नानक साहब जी की नजर ने परख्या ते कहन लगे पुत्र अजे ता उम्र तेरी खान पीण दी है अजे उम्र ता तेरी हसन खेडन दी है तैनू किवें ए सोच पैगी कि जन्म मरण कटिया जाए अजे ता जवानी बुढ़ेपा आउणा है। ते 12 साल की उम्र विच भाई बूढ़े का उत्तर सी बाबा मौत का कोई पता नहीं हूं इन्हें जवानी आउण तो पहले बूढ़े नू लै जाण मौत का कोई भरोसा नहीं। भाई मनी सिंह लिखते ने हजूर ने फिर कहा कहन लगे बेटा एक ता तू बड़ी रमज भरी बात की जन्म मरण कटो तेनू किवें पता लग गया कि मौत जेड़ी है ये जवानी विच भी आ सकती है बचपन विच भी आ सकती है। ते उस वक्त भाई बूढ़े ने बचन सुनाया कहन लगा बाबा एक साल पहला दी गल अपने बापू नाल खेतां विच गया वां जिमीदारा करने हां ते उस वक्त हाकमां दे घोड़े आए ने साडी कुछ फसल अजे जमीन विचों निकलदी पई सी कुछ जमीन विचों निकल के डडरी अद्धी कच्ची ते अद्धी अद्धी पक्की सी कुछ फसल पक चुकी सी हाकमां दे घोड़िया ने सारी फसल नू जमदी हुई नू भी डडरी नू भी पक्की नू भी एक वड्डे तो सारी नू उजाड़ के रख दिता ते उदन दी मन विच आवाज आई बूढ़िया ए ता हाकम ने इन्हां दे घोड़े खेत विच जमदी हुई फसल नू डडरी हुई फसल नू पक्की हुई फसल नू तबाह कर सकदे ने मौत ता बड़ी बलवान है हो सकदा कि मेरी कच्ची फसल मैनू बचपन विच लै जाए हो सकदा मैनू डडरिया जवानी विच लै जाए पर बाबा बुढ़ेपे तो बाद ता मौत अवश्य है इस करके उदन दा समझना वा कोई ऐसा मिल जाए जेड़ा कोई प्यारे प्रभु दी बात सुना के मैनू उस प्यारे परमेश्वर दे चरणा नाल जोड़ के मौत दा भय दूर कर दे। जदों भाई बूढ़े ने इन्ने बचन कहे भाई मनी सिंह लिखदे ने उस वक्त हजूर ने कोट छाती न लाया ते नाल इक बचन कहा सी कहन लगे पुत्र उम्र तेरी बच्चियां वाली है गल्लां तू बुढ़िया वालियां करना है 1500 ते 1800 सन तो इस बच्चे का नाम पै गया सी बाबा बुढ़ा जी। ए शब्द सुन के ए बचन सुन के कहा उम्र बच्चियां वाली गल्लां तुसी बुढ़िया वालियां करदे हो साध संगत एक वारी गुरु नानक ने घुट के छाती न लाया पता नहीं बाबे बुढ़े दे अंदर की कृपा वरती 1518 तो लैके 1631 तक बाबा बुढ़ा गुरु नानक दे गीत ही गाउंदा रहा। 113 साल एक गलवकड़ी ने इन्नी कृपा कर दिती। मैं अगे तुरां मेरे गुरु नानक साहब ने करतारपुर बन्निया रावी दे किनारे दोधे जिमीदार दी जमीन दे अंदर पिंड बन्निया इत्थे दोधे ने कहा सी मैं संखेप विच अर्ज करदिया जदों कृपा कीती गुरु नानक ने कहा सी दातिया मैं पिंड वसावांगा पुछिया किहड़े नां ते कहन लगा साईयां नानकपुरे दे नां ते ते मेरे साहब ने कहा सी दोधिया जमीन किहदी ए कहन लगा करतार दी पुछिया नानक किहदा ए कहन लगे करतार दा फिर कहन लगे जे जमीन ते नानक करतार दा है फिर नानकपुरा नहीं पिंड वसेगा उस नां ते जिहदी दात मैं लईए पिंड वसा तूं करतारपुरा। इत्थे करतारपुर वसाया सतगुरु ने अपने जीवन दे 18 साल करतारपुर वाही कीती है। खद्दर दा परना मोढे ते होना खद्दर दी चादर मोढे ते सिर ते मोटा खद्दर दा परना कदी देखो उन्हां दिनां नूं सिखां ने

पोहं पातिक बिना सह गुर अमरदास परसिह सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसिह ध्यान लहिया पौ मुकह गुर अमरदास परसिह अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जौ तौ रहै जा सुमंत्र मानवै लहै जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठै मिलै कन हर बूंद बसो रूमावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन

परम सम्मान योग जुगह जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों हजूर दी पावन पवित्र इलाही बाणी दा कीर्तन और गुरमत विचारा आप जिया ने सत्कार योग भाई साहब भाई जगजीत सिंह जी खुरां पासों सरवण कीतियां ने। कल दा दिन जो बतीत होया है, कल दे दिहाड़े धन गुरु अमरदास महाराज तीसरे गुरदेव दा गुरगद्दी नशीनी पुरब सी ते गुरु अमरदास महाराज जी दे इस पुरब नूं आपां अज मना रहे हां। गुरु नानक साहब जी दे इस घर दे अंदर जदों आपां इतिहास नूं गुरमत नूं पढ़ने हां ते एक चीज बड़ी विलक्षण सानूं जिहड़ी नजर आउंदी है, इत्थे गुरु दी कृपा ते निर्भर करदा है। 7 साल दा बजुर्ग बाबा भी जे किते गुरु के चरणा भी जुड़ के सेवा करे ते जिस समय लोग कहिंदे ने 70-72 साल दी उम्र विच बंदे नूं सूझ कोई नहीं शब्द वरतदे ने इह सत्रिया बत्रिया गया, 12 साल गागर ढो के 72 साल दा बजुर्ग भी सिख तो गुरु बन सकदा है। यही विलक्षणता है कि इत्थे 5 साल ते 3 महीने की बाल उम्र गुरु हरकृष्ण साहब जी वह भी गुरु बन सकते ने ते कृपा गुरु करे तो 72 साल का बजुर्ग भी गुरु बन सकता है। आओ गुरु अमरदास जी दे पावन पवित्र इतिहास की और बाणी की विचार आपने करनी है, जड़ा अज का दिन गुरगद्दी पुरब आप मना रहे हैं। इस दी विचार इस दिन दे संबंध विच गुरु कृपा नाल आपां विचारने, कृपा करके जितने भी बैठे हो ना एकाग्रता जरूर बख्शिया जे। कोशिश करो इस खिंडे हुए मन नूं गुरु अमरदास जी दे चरणां विच अज टिका दईए। जे तां बुद्धि तारक केवल तर्क करन वाली नाल सुणांगे ते याद रखना वह कहा होया केवल तर्क की बिरती वाला लगेगा, ते जदों प्रतख गुरु नू हाजर नाजर जान गुरु के बचन सरवण करांगे ते सतगुरु गुरु अमरदास की कृपा वरसेगी। विचार आरंभन तो पहला सतगुरु की बख्शिश की हुई गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का

कुछ घंटे तक रहता है और अज दे योगे चे कैमरे आ गए ने हुण इहनू चुक के हस्पताल ले जाया जाए हो सकता है अखां जो साया ओझल हो जाएगा खत्म हो जाएगा। इस वास्ते छेती छेती पहले इहदी अखां दे फोटो लै रहे ने। बाजार विच डिगे होया बंदा लाश ते बड़े बड़े कैमरे आ गए बस फोटो ले जा रहे। तो मैं नाल दे साथियों नूं कह रही सी बई इहनू चुकदे नहीं हस्पताल नहीं लै जांदे कहिंदे हुण ही लै जाणगे इन्होंने पांच मिनट तो ज्यादा नहीं लाने पर ये जो कुछ कर रहे ने इथों दा कानून है इसनों जो मार के गया है उहदी फोटो आ जाएगी। मैं कहा है विज्ञान इतना अगां चला गया है कि अखां ते जो समा जांदा है उहदी हुण फोटो भी ली जा सकती है। इहदा ते इह मतलब है कि पुराने जमाने विच शायराना तहय्युल जिहड़ा सी कि फलाना ते मेरी अखा समा गया है इतनी गल स्पष्ट हो गई। विज्ञान ने तस्दीक कर दी है। विज्ञान ने ते बिल्कुल जो है स्पष्ट कर दिता है तो खिमा करनी जिहड़ा मारन आया ना दुश्मन कहिंदे ने बहुत गहरा दुश्मन मित्र ही बन सकता है दूजा नहीं। जिस नाल थोड़ा कोई संबंध नहीं जिस नाल थोड़ा कोई लेना देना ही नहीं वह दुश्मन क्यों बनेगा मतलब ही नहीं। 90% गहरे दुश्मन ओही बनते ने जो किसी वक्त मित्र आते हैं बगौर मुताला करके कभी वेखना। इस वास्ते चाणक पंडित ने तो एक बहुत वड्डी गल कह दिती है क्योंकि चाणक ने साडे देश दे सब तो पहले नीति दर्पण लिखिया जिन्हों चाणक नीति दर्पण कहते हैं। राजनीति दे उत्ते जिहड़ा ग्रंथ है सब तो पहले लिखे है चाणक ने फिर लिखे है भरतरी ने। कुछ आलम ऐसा भी कहते ने कि राजनीति का एक पुराना ग्रंथ होर भी है वह बिदर का लिखा होया है वह आम प्रचलित नहीं आम लोगों की नजर भी नहीं पर चाणक ते भरतरी का लोगों की नजर के थले लोगों ने पढ़िया। चाणक यह कहता है जिहड़ी गल तू अपने दुश्मन नूं नहीं कहना चाहता ना छुपाना चाहता है वो गल अपने मित्र नूं भी ना आख। राजनीति क्योंकि उन्हें नीति का ग्रंथ लिखिया धर्म का तो लिखिया नहीं। चाणक ऋषि जरूर होया संत जरूर है लेकिन राजनीति का महापंडित सी बहुत वड्डा पंडित। उन्हें यह आख्या भी जिहड़ी गल तू अपने दुश्मन नूं नहीं कहना चाहता उस तो छुपा के रखना चाहता है मित्र नूं भी ना आख। भई क्यों कोई भरोसा नहीं वह कहिंदा मित्रता शिखरता ते पहुंच के दुश्मनी बन जाती है ते कई दफा दुश्मनी शिखरता ते पहुंच के मित्रता बन जाती है। इंज आखिया और अक्सर 90% ऐसा होंदा है कि जिहदे नाल बहुत गूढ़ा संबंध है बहुत गहरी चोट ओही पहुंचा सकदा और उपरा नहीं पहुंचा सकदा। उपरे नूं की पता है दूजे तीजे नूं की पता है अपना जितनी गहरी चोट पहुंचा सकता है दूजा तीजा नहीं पहुंचा सकता। राम तो भी लंका नहीं ढाणी जानी सी जे अपना ना आता उत्थे इतनी मैरिज करते हैं जे विभीषण ना आता यह हकीकत है बहुत वड्डी सच्चाई है क्योंकि अपने नूं सब कुछ पता है कि अपना जब दुश्मन होगा तो वह इतनी गहरी चोट पहुंचाएगा उपरा नहीं पहुंचा सकता उपरे नूं तो कुछ पता ही नहीं है। इस वास्ते यह हकीकत है बहुत वड्डी जो है सच्चाई है कि दुश्मन की तस्वीर अखां विच क्यों समा जाती है लाजमी किस वक्त मित्र रहे होगा मित्रता दुश्मनी च बन गई तो दो ही तो याद आउंदे ने या मित्र याद आउंदा या दुश्मन दूजा तीजा नहीं याद आउंदा दुश्मन नाल भी संबंध है। तुसीं बगौर मुताला करके जो है बैठना कदी सोचना कौन याद आउंदे ने या मित्र याद आवणगे या दुश्मन याद आवणगे। दुश्मन नाल भी संबंध है आंतरिक संबंध है दिल का संबंध है। दिल मित्र नूं याद करता है दिल दुश्मन नूं भी याद करता है। इस वास्ते दुश्मन नाल भी संबंध बनिया रहिंदा है मित्र नाल भी संबंध जो है बनिया रहिंदा है ते संबंध कारण करके उहदा अक्स अखां दे च आउंदा है।

0: ਸ਼ਾਇਰ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ ਹੈ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿਹਾ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨ ਦੇਖਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਟਪਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਟਪਕਦੀ, ਅੱਖ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਭ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਪਕਦਾ, ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਜਦ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇੰਜ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਉਹ ਘੂਰ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ, ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਲੋਚਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਚਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗਾਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਲੁੱਚਾ, ਗਾਲ। ਲੁੱਚਾ ਦੇ ਅਰਥ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੁੱਚੇ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਇਹਨੇ ਲੋਚਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੁੱਚਾ। ਧਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਪਰਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਗੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੇ ਇਸਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਲੁੱਚਾ। ਰੂਪ ਵੇਖਿਆ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਾ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੜ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੋਚਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਇਸਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਲੋਚਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੁੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਲੋਚਨ ਜੋ ਹੈ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਲੁੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁੱਚਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੋਚਨ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਤੇ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ, ਪਰਾਈ ਸੰਪਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਦਾ ਉਸਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ? ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਰ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੀਰ ਨਾਲ ਛਲਨੀ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਵੀ ਇੰਜ ਘੂਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਛਲਨੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਜ ਘੂਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖ, ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਵੇਖਦਾ ਘੂਰ ਕੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਇਆ, ਲੋਭੀ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਇਆ, ਵੇਖਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾੜ ਦੇਵੇ, ਲੋਚਨ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਗੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੁੱਚਾ। ਲੁੱਚੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਇਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਢਿਆ, ਬਸ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਖ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਟਪਕਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਵਸੇ ਹੈ, ਲੋਭ ਟਪਕਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਲਾਲੀ ਕਰੂਰਤਾ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਟਪਕਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖ, ਇਹਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਮਿੱਤਰ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਤੋ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਟਪਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬੂਤ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਦੇਖਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੇਖਦਾ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਬੂਤ, ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਨੈਣ ਰਹੇ ਰੰਗ ਲਾਈ ਅਬ ਬੇਗਲ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੇਖਿਓ ਰੀ ਉਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉਚਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣ ਪਿਆਰਾ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੜਪ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਿਯ ਅਗੋਚਰ ਆਂਧਰੇ ਨਾ ਭਏ ਨੈਣ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਂ ਲਜਾਇਓ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜੋਤ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਫੂਟਿਓ ਰਿਦਾ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਗੌਣ ਚੂਕ ਉੱਤਰ ਨਾ ਆਇਓ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੂੰ ਮਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਹੀਏ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਲ ਦੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਕਾਬਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਬਈ ਫਲਾਣੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ ਸੰਨ 70 ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਇੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਖਾਂ ਤੱਲੇ। ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਜੁੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ ਬਈ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਤੱਲੇ। ਕਾਬਲ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਰ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਮਿਲਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਜਾਏ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਅੰਗ ਪੀੜਿਤ ਹੋਵੇ ਅੱਖ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਦੋਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾ ਸੀ, ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ। ਤੁਲਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਹਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਰੇ ਚ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌ ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮਤ, ਮੂਰਖਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਰੇ, ਕਦੀਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਦੀਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ। ਇੰਨੀ ਤੰਗ ਦਿਲੀ, ਇਤਨਾ ਤੰਗ ਹਿਰਦਾ, ਇਤਨਾ ਸੰਕੀਰਣ ਹਿਰਦਾ, ਇਤਨਾ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੀਰ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਬੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਰੀਦ ਬੈਠ ਗਏ, ਜੈਦੇਵ ਬੈਠ ਗਏ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਫਰੀਦ ਬੈਠ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਬੈਠ ਗਏ, ਜੈਦੇਵ ਬੈਠ ਗਏ, ਭੀਖਣ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਸਦਨਾ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਮ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਚ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖੋਗੇ? ਤੋ ਸੰਤ ਤੇ ਰੋਵੇਗਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਰੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚ ਕਿਧਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਸੰਤ ਹੋਵਣ ਤੇ ਹੋਵਣ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਦਾ। ਜੋ ਸੰਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਅੱਖ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਅੰਗ ਹੀ ਤੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਪਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਹੋਵਣ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵਣ। ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਪਏਗਾ। ਹੱਥ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ। ਹੱਥ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਮਹਿਰਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਆਖੇ ਕਿ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੋ, ਬਾਹਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅੰਗ ਕੋਈ ਰੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਰੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਕੁਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਸਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਪੀੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਜਾਨਵਰਪਣਾ, ਜ਼ਾਲਮਪਣਾ, ਦੈਂਤਪਣਾ ਇਤਨਾ ਕਿ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤੇ ਗਿਓ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾਏ ਗਏ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, तेरिया दो बावा कमजोर हो जान तू लड्डू वंडेगा तू दीवे जलाएगा। पंजाब ते देश दा अंग ते देश दा हिस्सा है पर गजब की गल है ये कितनी वड्डी मूर्ता कि शरीर दे अंग नू कोई अंग ही ना समझे ये बहुत वड्डी मूर्ता होती है ते जद कोई अंग नहीं समझदा तो फिर उसनू दबांदा है। तो मैं इस करा तुलसी एक बड़ी महान गल करदे ने संत दे हिरदे दी। वो कहने संत रिरा नवनीत समाना कहा कवने पर कहा न जाना। संत दा हिरदा नवनीत दी तरह है। नवनीत कहने मक्खन मक्खन दी तरह है। संत ते मक्खन एक ने। फिर एकदम ख्याल आया तुलसी नूं भई जिहड़ा मैं प्रमाण दिता है ना गलत दिता है ठीक नहीं दिता। संत लोग प्रमाण ते देंदे ने पर बाद विच ख्याल आंदा है प्रमाण पूर्ण नहीं है मुकम्मल नहीं। ख्याल आ जांदा है जैसे मैं भाई नंद लाल नूं पढ़दा उन्होंने दो प्रमाण दिते ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बाणी दे उत्ते बोलां दिते ते फिर अपने दिते हुए प्रमाण नूं ही वापस लैंदे ने भई ये जो मैं गल आखी है मैं वापस लैंदा ये उन्हां दी इक गजल है। भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे ने मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद दीवाने गोया। भाई साहब भाई नंद लाल बड़े कीमती बचन ने आप दे। तो मैं भी सिख जगत विच एक बदकिस्मती देखदा अगर पर्शियन का बोध बिल्कुल हट गया तो नंद लाल नूं किवें समझांगे नंद लाल नूं किवें जाणांगे कि नंद लाल ने की आखिया से नंद लाल की बोलता रहा। खैर मुख्तसर अर्ज करा मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद मिसले मिसाल ऐ कलगीधर पातशाह थोड़े बुलां दे चों जो बचन निकलता है थोड़ी रसना दे चों जो पावन बाणी निकलती है कलाम निकलता है तुंगे शकर न बाशद उस एक बचन की तुलना देते एक बोरी जिहड़ी खंड है ना वह कुछ भी नहीं। मिसाल दी भी थोड़ा एक बचन इतना मिठा है इतना स्वादली है कि एक बोरी खंड की है कुछ भी नहीं। अगे चल के नंद लाल कहते ने मिसाल जिहड़ी मैं दी है बादशाह गलती दिती है फिर आप कहते कबूल देने मिसले दहाने तंग तो तुंगे शकर न बाशद ई मिसल रा के गुफ्तम जी खूब तर न बाशद ऐ जिहड़ी मैं मिसाल दिती है मेरे बादशाह मैं खूब अच्छी नहीं दिती ठीक नहीं दिती वापस लैंदा ऐ जो मैं प्रमाण दलील दिती है ठीक नहीं दिती मैं वापस लैंदा। आख भी दिता है बोले हुए बोल वापस भी ले ले प्रमाण दे भी दिता है कबूल पे कर दें नहीं ये प्रमाण कोई प्रमाण नहीं ऐ दलील कोई दलील नहीं ए तशबीह कोई तशबीह नहीं। क्यों बोरी खंड दी किन्ने मूह मिठे करेगी 1000 बंदियां दा मूह मिठा कर लेगी चलो 2000 इंज कह लो चलो 5000 बंदियां दा मूह मिठा कर लेगी शरबत बना लो मूह च पा लो तो बोरी खंड दी ते खत्म हो गई ना ते मिठास किन्नी देर मूह दे च रहेगी 5 मिंट 10 मिंट और किन्नी देर रहेगी फिर मिठास भी गई ते शक्कर भी गई। नंद लाल कहिंदे ने पातशाह बड़ा जुल्म हो गया मैं शक्कर नाल थोड़े बचना नूं तशबीह दे दित्ती शक्कर दी मिठास मूंह दे 5-7 मिंट ते शक्कर खत्म भी हो गई दाता थोड़ा एक बचन रहिंदी दुनिया तक लोगों दे हिरदे च मिठास पांदा रहेगा ना बचन खत्म होवेगा ना मिठास खत्म होवेगी। जिहड़ा बचन आउंदा है वह अमृतमयी बचन आउंदा है ते युगा युगा तक मिठास दे जांदा हुंदा है। तो मिसाल ते दित्ती नंद लाल ने पर दित्ती हुई मिसाल नूं वापस लैंदे मिसाल ते दित्ती है पर आखदन पातशाह मैं कोई मिसाल चंगी नहीं दित्ती भावें शायर हां पर मैं तशबीह कोई चंगी नहीं दित्ती। हू बहु इसे तरीके नाल कवि तुलसी एक मिसाल देंदे ने संत दे हिरदे दी पर दे के कहंदे ने नहीं ए गल बनी नहीं ए प्रमाण ठीक नहीं ए तशबीह ठीक नहीं संत रिदा नवनीत समाना कहा कवने पर कहा न जाना आखिया तो है कवि ने पर आखा की जांच नहीं आई कहने का ढंग नहीं आया ये तस्वीर ठीक नहीं बे क्यों तो कारण दसते ने निज परताप द्रवे नवनीता पर दुख दरवे संत पुनीता मक्खन नु सेक लगे मक्खन पिघलता है जब मक्खन नु ही सेक लगे ते मक्खन पिघलता है पर संत का हिरदा तो इतना कोमल है सेक दूजिया नु लगता है ते पिघल आप जाता है इस वास्ते मक्खन की है कुछ भी नहीं मक्खन नु सेक लगेगा ते पिघलेगा ना उंज ते नहीं ना पिघलेगा पर संत का हिरदा मक्खन तो कोमल है देश दे किसे कोने च किसे नु चोट पहुंची है उदा हिरदा पिघल गया है उदा हिरदा रो उठे है संसार दे किसे हिस्से च किसे खिते च किसे नु चोट पहुंची है ते उदा हिरदा रो उठदा है साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ते एक थां ते कहंदे ने कित को साहिब आवे रो तू उना का तेरे ओ ऐ अकाल पुरख हिरदा रो उठे ये तेरे जी ने यह मैथो रोंदे हुए नहीं वेखे जाते तू इना दा है ये तेरे ने और इस तरह की फरियाद गुरु नानक करते इस वास्ते उन्हों की अरदास सारा जगत आंदा है जगत जलंदा रख ले अपनी कृपा धार ये अरदास राजनीतिक नहीं करेगा राजनीतिक उन्हों की अरदास करेगा भी जो मेरे पैरों के थले ने बस ये जीवदे रहन मेरे पैरों के थले ही रहन यही ने बस यही मेरे अपने ने बाकी कोई नहीं जो पैरों के थले नहीं आवना चाहते मेरे अपने किस तरह हो सकते हैं वो मेरे अपने नहीं ने इस वास्ते दो लफ्ज मैं वरत दिया संत तो ज्यादा कोई कोमल नहीं राजनीतिक तो ज्यादा कोई जालम ते कठोर नहीं है और ये दो ही बंदे ने जिन्हों का इतिहास लिखा जाता है ये दो ही बंदे ने संसार जिन्हों की चर्चा आती है जिन्हों की गल आती है तीजा कोई बंदा नहीं है मैं फिर अर्ज करा हिटलर तो ज्यादा कोई जालम लभोगे तो हिटलर कौन है चाहता पैर के थले चाहिए ने जेडे पैर के थले नहीं उन्होंने उन्हें गैस के चैंबर बनाए सन जिंदा ही बंद साड़ देता से उन्हें ऐसे कैंप बनाए सन कैदियों के जिथे बड़े दुखद ढंग उन्होंने टॉर्चर किया जाता से जब मैं हिटलर की कथा पढ़ रहा सी दस सफे पढ़ के किताब मैं रख दी मैं कहनी अपने को पढ़ी नहीं जाती कैदियों लह गए ने जंगल दे आख्या बहुत वड्डा खड्डा खोदो तो बहुत वड्डा खड्डा खोद दिता है दस दस कैदी हथ बन्ने खड़े ने ते जिन्ना हथा दे फावड़े सन खुदाई कर रहे सन उन्हें ही कैदियों नूं आख्या इन्हां नूं धक्का मारो टोए दे चों वो कैदी विचारे उन्हां नूं धक्का मारदे सन उन्हां कैदियों नूं जिन्हां दे हथ बन्ने हुए और फिर उन्हें कैदियों नूं आख्या जांदा सुन इन्हां ते मिट्टी पाओ जिंदा ही दब दे उन्हां इस तरह ही करदा सी कल मैनूं एक सज्जन ने दस्या कि लाशां जो ढो रहा सी म्यूनसिपल कमेटी की गड्डी दे च लाशां जद उतारियां जा रही सन ते किधरे एक सिसक रहा सी और उहदी अखां भी किधरे खुल पईआं उन्हें आख्या कोल खड़े भी वीर मैनू पानी पा दे खून शरीर चो बहुता निकल जाए ना तो प्यास ही लगती है तड़पदा होया बंदा पानी मंगता है हाए पानी रोटी नहीं मंगता पानी मंगता ते नाल खड़ा होया पुछदा है उस तो बेदियां अखां खुलियां की आखदा पिया है पानी मंगता है दूजी गोली मार दिती अखां ठंडियां कर दिती तो मैं कहनी हिटलर ते हर वक्त मौजूद आंदा है कबीर भी हर वक्त मौजूद आंदा है चंगेज खां हर वक्त मौजूद आंदे ने पर मैं इतनी अर्ज कर दिया गुरु गोबिंद सिंह जी भी हर वक्त मौजूद आंदे ने अपने पंथ के रूप में अपने खालसे के रूप में इत्थे औरंगजेब भी मौजूद है चंगेज खां भी मौजूद है पर खिमा करनी नामदेव भी मौजूद रहिंदे ने तुलसी भी मौजूद रहिंदे ने जो कहिंदे रहिंदे ओ भी ने जो कहिंदे ने सारे मेरियां नजरां दे थल्ले ते ओ भी ने जो कहिंदे ने जो मेरे पैरां दे थल्ले ने ये मेरे अपने ने बाकी नहीं बाकी कौन आउंदे ने ते मेरे नाल अपणंत मेरे नाल सांठ वांठ करनी है मेरे पैरां दे थल्ले आओ ते पैरां दे थल्ले ते जिहड़ा आ गया कुचलिया गया रह की गया फिर ओदी कोई जिंदगी है ओदा कोई जीवन है ओदी कोई आत्मा रह जांदी है ये दो तरह की सोचनी है संसार विच एक राज सिंघासन की सोचनी एक राम सिंघासन की सोचनी राम का सिंघासन की है कबीर ने नामदेव ने भाई गुरदास ने बड़ी लंबी व्याख्या की है एक सवैया मैं थोड़े सामने रखे है जिदी मैं तशरीह करनी है थोड़े सामने ते राज सिंघासन की है दो लफ्जों च मैं कह दिया पैरां थले रखना है बस इन्नी गल राम सिंघासन की है नजरां थले रखना है अखां विच रखना है अखां थले रखना है अखां विच रखना है ते जिन्नू अखां विच रखोगे क्षमा करनी किसी अंग च अगर कोई तकलीफ हुई अख ते रोवेगी लाजमी रोवेगी मैं समझदा ये हरिमंदर ये अकाल तख्त अखां थले नहीं सी भारतवासियों के तदी ते नहीं रोईया तदी ते अख च हंजू नहीं आया तदी ते पीड़ा नहीं हुई और आखदे ने जख्म भरने ने जख्म इंज नहीं भरने भरे जाते जख्म ताई भरे जाते ने तुसी बोलो सानू भी बोलन दे तुसी बोल दे हो असी भी बोलांगे तुसी कुछ कहंदे हो सानू भी कुछ कहन दे हो जो कह सकते ने ते जिन्हां दे उत्ते कहण दी बहुत वड्डी जिम्मेवारी है उन्हां नूं तुसी बंद करके रख दे हो ते एक धुआंधार बोली जान बोली जान बोली जान ये कित्थों दा इंसाफ है ये ते कोई इंसाफ नहीं है बिल्कुल हकीकत मैं थोड़े सामने रख रहा हां और क्षमा करनी साहिबां दे अगों मैं रोज अरदास करके आना दाता मेरे जबान चो कोई गलत गल नहीं निकलनी चाहिए तो मैं ना किसी नूं भड़कांदा ते ना ही कोई गलत बयान नहीं करता ते ना ही राजनीतिक होने का मैनू शौक मैं ते संत सिपाही नूं मनदा केवल सिपाही नूं मैं मनदा ही नहीं केवल सिपाही ते मैं लानत पाना केवल सिपाही की होंदा कुछ भी नहीं दुष्ट होंदा जालम होंदा सिपाही ते ओ पूजनीक जिहड़ा संत होवे जो संत नहीं वो सिपाही नहीं वो जालम होवेगा वो दुष्ट होवेगा वो महा अत्याचार करेगा जिवें कातल करदे ने इस वास्ते गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिपाहियों की फौज नहीं बनाई सी संत सिपाहियों की फौज बनाई सी संत सिपाही ये रूपरेखा भी मैं थोड़े सामने रखांगा संत सिपाही और जिदे कुल हिरदा संत वाला है ते जिदे कुल हथ सिपाहियों वाले ने क्षमा करनी किसी की रक्षा करदे ही हथ उठणगे बस इन्नी गल है किसी की रक्षा करनी है देश बचाना है किसी मजलूम की रखिया करनी है किसी यतीम की रखिया जो है करनी है क्षमा करनी भुल गए ये देशवासी उस संत सिपाही नूं जद वजनी दे बाजारां विच देश की असमत टके टकच विकदी सी और देश की असमत उत्थे कुरलांदी सी क्षमा करनी ये संत सिपाही अगे आए सन देश की असमत बचाई देश की इज्जत बचाई अज देश दे सिंघासन ते ये बैठे ते क्षमा करने सब एहसान भुल गए बहुत भुल गए मैं सारिआं नूं ते दोषी नहीं ठहरांदा पर क्षमा करनी इस देश की बहुत सम्मति दोषी है इन्नी मैं अर्ज कर इन्ना आख सकदा इस देश की बहुत सम्मति जिहड़ी है वह दोष तो बच नहीं सकती और इस दोष तो वह भी नहीं बचन गए ठीक है भीड़ा समय विपता समय भाई महा सिंह ने ते साथियों ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं विदावा जरूर दिता सी पर पश्चाताप भी कीता सी ते सतगुरु तो अपनी जाना भी निछावर कर दितियां ते सतगुरु ने विदावा फाड़ भी दिता पर हुण ते ऐसे दुष्ट पैदा होए ने जिन्हां ने विदावा लिख दिता ते लिख ही दिता है बस वह दुष्ट मौजूद ने जो फिर नेड़े नहीं आए लिख दिता है विदावा असी ना गुरु दे ना संगत दे ना पंगत दे ते महा सिंह ते हर वक्त आउंदे ने ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਹੋਇਆ। ਦਾਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਆਖੇ ਨੇ, ਤੈਥੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸਾਥੋਂ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਥੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਵਿਦਾਵਾ ਜੋ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 40 ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ 40 ਦੇ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ 10,000, ਇਹ ਮੇਰਾ 50,000, ਇਹ ਮੇਰਾ 5,000 ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ 1,000 ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ 1,00,000 ਹੈ। ਇੰਜ ਵਰ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ, ਤੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਹੋਇਆ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਧਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਮੋਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਧਰਮ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਸਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ 40 ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ 1,25,000 ਬੈਠਾ, ਔਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਿਆ, ਦਾਤਾ, ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪਖੇਰੂ ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਦਾਵਾ ਫਾੜ ਦੇਣਾ। ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ 40 ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ। ਔਰ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਨੇ ਕੁਝ ਫਿਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ, ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੂਨ ਕੋਈ ਵਿਅਰਥ ਥੋੜੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਰਮਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਛ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਪੜੇ ਸਨ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਇਰਮਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਲਾ ਦਬਾਓ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਟਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਕੀਪ ਅਗੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸਫਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਤਹਿਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਦ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਜਾਣਾ, ਰਸਤਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਫਾਨ ਰਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਾਰਾ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਜ 4-5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ 4-5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਘੰਟੇ ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਖੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤਹਿਰਾਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੇ ਡੁੱਬਕੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਕਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਾਲਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਸੀਹੇ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। आप दी ज्ञात वास्ते अर्ज करदे हां, जहांगीर ने भी यही किया सी कि कसस इस ढंग दा गुरु अर्जन देव जी नूं दिओ, हुण नहीं डुलना चाहीदा। यह भी पढ़ लेना तुसीं तोज़ के जहांगीरी विच, जो स्वयं जहांगीर ने लिखे, हुण नहीं डुलना चाहीदा। दुष्ट तो दुष्ट बंदे भी मनदे आए ने कि जो सतवादी है, इंसान पसंद बंदा है, बेकसूर बंदा है, अगर उसका खून डुलगा तो डुले हुए खून तो कई शहीद पैदा होंगे। होर ये पुराने लोग मन्ने मनते आते सन, तो क्षमा करने पंजाब की धरती विच किधरे मनी सिंह का खून डुलिया है, किधरे बाबे दीप सिंह का खून डुलिया है, किधरे महा सिंह का खून डुलिया है, तो कि
1: दार्शनिक लोग ऐसा कहते ने वो वस्तु वो हस्ती मनुख नु सुख दे सकती है जो मनुख दे काबू दे च होवे, जो काबू विच नहीं बेकाबू है वो सुख की थां ते दुख देंदी। इस वास्ते कारामत और सुख वही चीज देंदी है जो बंदे दे काबू विच है। आदि काल तो जो गल बंदे की समझ में आई, इस वास्ते उसने जिस जिस तो कम लेना सी, ते जिस जिस तो सुख लेना सी, उन्हों काबू विच रखन दे यतन कीते। मनुख ने जद अजे जंगलां च रहिंदा सी ते सारा कम भी जंगली जानवरां तो लेंदा सी, गल समझ विच आ गई सी जिहड़ा जानवर मेरे काबू विच नहीं मैं उस तो कम नहीं ले सकदा, उस तो सुख नहीं ले सकदा। मनुख ने घोड़ा पकड़िया ते घोड़े दे मूंह विच लगाम पा दित्ती, सजे खिचदा है घोड़ा, सजे मुड़दा है, खब्बे खिचदा है, वह खब्बे जांदा है, जिथे दोवें लगामां खिच लवे उथे रुक जांदा है। जिस घोड़े दे मूंह विच लगाम नहीं, उस घोड़े का असवार मंजले मकसूद ते नहीं पहुंच सकेगा, टिकाने ते नहीं पहुंच सकेगा। क्यों? एक ते जिथे उसने मोड़ना है मुड़ना नहीं, जिथे उसने रोकना है रुकना नहीं, तो सुख की थां ते उस तो दुख ही मिलेगा। मनुख ने ऊठ नूं पकड़िया ते उहदे नक विच नकेल पा दित्ती, मैज इस वास्ते कि ये सिर्फ चले ही ना, जिथे इसनूं रोकना चाहिए रुक भी जाए। हाथी के सिर के उत्ते अंकुश का रखना इसे गल का सबूत है कि इस तो सुख लिया जा सके ते कम ले जा सकन, जिथे असी इसनूं रोकीए अंकुश मार के रुक जाए। होर अगां चलीए, बैलां दे नक विच नथ पा दित्ती, जे नथ ही नहीं कि बैल हल दे चल सकते काम कर सकेंगे। जो जानवर रुकदा नहीं ते मुड़दा नहीं, वो सुख दी थां ते दुख दा बायस बनता, सुख नहीं देंदा। मशीनरी का युग आया, जानवर सहजे सहजे रुखसत होने लग पे मनुख की दुनिया तो, ते मनुख ने साइकल बनाई, ते साइकल दे विच दो ब्रेकां ला दित्तियां, अगले पहिए च भी ब्रेक है, पिछले च भी ब्रेक है, दो ब्रेकां ने, ते बिना ब्रेक दी साइकल होवे ते कोई तेजी नाल उस नूं चलावे ते अगों आ जाए ढलान रोकियां रुके ना, तो सवार मंजिले मकसूद ते पहुंचण दी थां ते मरगट घाट पहुंचेगा। साइकल का रुकना बड़ा लाजमी है, उसका काबू में चलाना बड़ा लाजमी है। फिर मोटर कारां ते बसां रेलां गड्डियां बनिया, बस का चलना ही कोई बहुत लाजमी नहीं, उहदे नाल ब्रेकां दा होना ते उहदा रुक जाना भी बड़ा लाजमी है। मुसाफरां नूं दस दिता जाए भी इस बस दियां ते ब्रेकां फेल ने, काम नहीं करदी, ते जिथे इस नूं रोकना चाहांगे ते नहीं रुकेगी। सियाणे ने भी कह देना कि बेकाबू हो गई, भी जिहड़ी बेकाबू है मतलब मकसूद नहीं पहुंचाती, मरगड़ घाट पहुंचाती है, वो तो शमशान घाट पहुंचाएगी। इस बस दे च नहीं बैठना क्योंकि रुकदी नहीं, इहदियां जो है ब्रेकां काम ही नहीं करदियां, जे ते इसनूं रोकना चाहवांगे ते रुकेगी नहीं। बंदे ने रेल गड्डी बनाई भावे चलती तो सिर्फ इंजन तो ही है, पर रोकण का आला हर डब्बे चैन खिंचो तो रोक लो, जंजीर खिंचो तो रोक लो, तो चार चार पांच पांच थां ते एक एक डब्बे जंजीर लगिया ने। चलण के नालों भी रोकना गड्डी का बड़ा लाजमी, बहुत लाजमी। जिस स्टेशन पर बंदा रुकना चाहता जो रुके ही ना, तो सुख की थां पर फिर दुख देवेगी। इस वास्ते बंदे ने चाहे वो जानवर सन, हाथी सन, घोड़े, बल्द, ऊंट इत्यादि, या रेलां, मोटरां, गड्डियां ने, इन्हां नूं काबू विच रखण वास्ते लगाम, अंकुश ते ब्रेकां बकायदा जो है नाल लाईयां, ताकि सारा निजाम जिहड़ा है इह काबू विच होवे। जो बेकाबू है वह सुख की थां ते दुख देंदा। विधान बनाए धर्म दे, समाज दे, राजनीति दे, मैच इस वास्ते कि यह अमोल ना चलन, बेकाबू ना चलन। पर खिमन करनी कुछ समय तो पंजाब दे जो राजनीति की गड्डी चलती पई सी बिना ब्रेकां दी चलती पई सी, ते कई नूं कुचल के रेल ए बस लंघी जा रही सी। वो हाथी जिहदे सिर ते अंकुश नहीं सी, ते वो ऊंट सी जिहदे नक दे सनेह नहीं सी, जो दौड़ के रहा सी किधर मुड़ना है किथे रुकना है यह भुल गया, ते कुचलदा ही रहा, कुचलदा रहा। हजारां बंदियां नूं इसने इस दो साल में कुछ लिया, पर जिथे तक अज की कतलता ते परसों जिहड़ी कन्वेंशन होनी है, मैं दावे नाल कहना इस गड्डी नूं ब्रेकां लग जाणगियां और काबू च हो जाएगी। और आइंदा लई ये बेकाबू होके चलना शायद भुल जाए और उस लई सुपना बने। मैं देखदा दरिया ने ये अगर दो बनेरिया की बंदिश दे चलन तो सुख देंदे ने, ते दोवें किनारे तोड़ के पानी उछल पाए तो फिर पिंड गर्क होणगे, शहर तबाह होणगे, खेतियां नीच तो नाबूद होणगियां। जब कभी इस तरह की विचार मैं संगत के सामने रखदा तो मैंने चशम की वाकया आप बीती याद आ जाती है। कानपुर मैं वालबन फरवरी के महीने 15 दिन हर साल हाजरी भरदा, ते रोज गंगा पार शाम नूं सैर करन चले जांदे सी। ते गंगा पार एक मंदिर सी, बड़ा सोहना बगीचा बनिया होया, ते टहलदे होए मैं अपने कुछ कानपुर दे दोस्त मित्रां साथियां नाल उत्थे जा बैठदा सी। ते साल दे साल इस तरह नियम चलता रहा। जब मैं दूजे साल गया ते देख के दंग रहा, गंगा पार की थी ते मंदिर नहीं सी, वो सोना बगीचा भी नहीं सी जेदे च बैठ के आपा वार्तालाप करदे सी आपसी, और मंदिर का वो साधु वो भी नहीं। नाल दे साथियों ने मैं पूछे थे कि मंदिर आंदा सी, बड़ा सोहना बगीचा आंदा सी, अपन इतने बैठते होंगे सी, तरह तरह के मशवरे करते सी। नाल दे कवि सज्जन जो दास दे दोस्त सन मैनू कहन लगे, ज्ञानी जी पिछले साल गंगा जर जोर ते हड़ ते आई है, हड़ां ते आई बड़ी जोर दी, ते ओ मंदर बहा ले गए और जड़ा बगीचा सी ओ भी सारा रोड़ ले गए। ते ओ जड़ा साधु है ओ हुण नास्तिक हो गया, कहिंदा ले गंगा मैं तेरी पूजा करदा रहा, तू मेरा ही मंदर बहा के ले गए। मैं मेहनत नाल मंदिर बनाया, मेहनत नाल छोटे छोटे बूटे लाए, अंबां दे अमरूद दे और फलदार बूटे, कि वो जब फल देन ते आए ने ते तू सारे रोड़ के लै गए, मेरा सारा बगीचा ही बहा के लै गए। मैंने उत्थों के सजना ने दसिया उस साधु रोंदा रहा और रोंदा होया, नास्तिक हो गया है गंगा, मैं तेरी पूजा नहीं करनी, हुण मैं तेरी प्रतिष्ठा नहीं करनी, हुण मैं तेरे अगों सिर नहीं झुकाना। हिंदुस्तान विच दरिया करीबन करीबन इस तरह के काबू चलते हैं, क्योंकि लंबे चौड़े इन्हां दे आले दुआले बन नहीं ने। ते मैं पिछले साल जदन लंदन शहर विच घूम रहा सी, ते लंदन शहर दरअसल दरिया थेम्स के दोवें किनारियां ते वसिया होया, विचकार दरिया वगदा, आर पार यह शहर है। ते उत्थों दे लोक मैनू दसने जिहड़ा थेम्स दरिया है यह साल दे साल हड़ ते आउंदा सी, ते लंदन दे अद्धे जिहड़े घर सन मकान सन डुब जांदे सन, नित तो नाबूद हो जांदे सन। रस्ते विच कई देहातां नूं विरोड़ छड़दा सी, कई खेतियां नेश तो नाबूद कर देंदा सी। 400 मील इस दी लंबाई थेम्स दरिया दी, ते जोर दे बरसातां दे दिनां दे साल दे साल ये 400 मील तक तबाही करदा सी। रस्ते च जो खेतियां, रस्ते च जो पिंड, ते जिहड़े वड्डे शहर या कोई धार्मिक अस्थान आए ये बहा के लै जांदा सी। इत्थों दी सियाणी कौम ने 400 मील तक दोवें पासे उच्चा बन ला दिता। हुण दरिया हड़ते ते आउंदा है पर हुण शहरां नूं नहीं डोबदा, हुण कस्बियां नूं नहीं डोबदा, हुण खेतियां नूं नेश तो नाबूद नहीं करदा, बल्कि उस पानी तों हुण अपनी मन मर्जी दे मुताबक लोग काम लैंदे ने, उहदी वरतों करदे ने, क्योंकि दरिया बेकाबू जो है काबू विच है। जिथे मैं देखिया कि बरतानिया दे दरिया काबू विच ने, उत्थे उत्थों दी राजनीति ही काबू विच है। पार्लियामेंट हाउस दे बाहर कोई 13-14 जबाना विच कुछ लिखिया होया सी, ते लोकी बड़े शौक नाल पढ़न, किधरे फ्रेंच विच लिखिया, अरबी विच भी लिखिया होया सी, इंग्लिश विच ते उन्होंने लिखना ही सी। ते लोग जिहड़ी जिहड़ी भाषा जानदे सन उन्हूं पढ़दे सन, कई नोट भी करदे सन। मैं लंबी चौड़ी भीड़ देखी, ते मैं नाल दे साथी नूं पुछ लिया कि बोल की ने जिन इतने शौक नाल लोकी पढ़दे पए ने और पढ़दिया पढ़दिया अश कर उठदे ने, दाद देंदे ने, खुशी जाहिर करदे ने और नोट भी कर लैंदे ने। जो नाल मेरे सज्जन गया उन्हें अनुवाद करके दसिया, कहिंदे गए शेक्सपीयर दे बोल ने जिन्हों अनेकां जबाना विच इत्थे बार लिखिया गया, जिहदा अनुवाद यह है पार्लियामेंट हाउस के बाहर बोल, ए बोलण वाले हो सकता है मैं तेरे नाम सहमत ना होवां। ऐ बोलन वाले हो सकता है मैं तेरे नाल सहमत ना होवां, पर मैं अपनी जान दे देंगा अगर तेन किसी ने बोलन पर रोकया। ये बोल लिखे हुए ने, ये लवज लिखे हुए ने, तो मैं उसनों पढ़ के सारा दिन रटदा रहा। ऐ बोलन वाले हो सकता है मैं तेरे नाल सहमत ना होवां, पर मैं अपनी जान दे देंगा अगर तैनू किसी ने बोलन तो रोकया। धर्म का फल की है स्वतंत्रता, मोक्ष, ते मुक्ति का मतलब की है बोलन की आजादी। उत्थे पूर्ण तौर पर दे दी गई है और इतनी खुल। एक होर भी मैं गल दसा, अंग्रेजा की गलत नगर ते साडे देश दे सियासतदाना ने कर ली है, उस ढंग की पार्लियामेंट हाउस भी बना लिया, एमपी भी बन गए ने, पर क्यों करने उन्हां वर्गा दिल ते दिमाग कितों लियाणगे। हाइड पार्क में देखी इस तरह के चार पांच माइक्रोफोन लगे हुए, ते अगों काफी कुर्सियां भी सन, पर गजब की गल है कि स्टेज पर कोई वक्ता नहीं, बोलने वाला नहीं से, ते स्रोते दो चार जरूर थे सन। ते नाल दा साथी मैनू पार्क दिखाण ले आया, ते मैं उस तों पूछ लिया, मैं कि माइक्रोफोन बड़े सजा के रखे हुए ने स्टेज ते, स्टेज भी बड़ी सजाई हुई है, स्रोते भी चार पांच बैठे ने, बोलने वाला कोई एक ही है इत्थे। मैंने लगे ये बरतानिया गौरमेंट की तरफों इंतजाम किया होया, माइक्रोफोन उन्हों की तरफों लगे हुए। जिस किसी बंदे ने गौरमेंट के खिलाफ बोलना, किसी मिनिस्टर के खिलाफ बोलना, किसी ऑफिसर के खिलाफ बोलना, या किसी थां ते उसके कोई किसी अफसर ते मिनिस्टर ने उसके ते वधीकी की है, तो वह अदालत विच नहीं जा सकता, पैसे नहीं खर्च कर सकता, उसके कोल समा नहीं, तो वह इत्थे आके बोले, उसके बोल पहुंचणगे, उस ते अमल होवेगा। आ जब मैं सिलसिला देखा तो मैं आश्चर्य कर उठा, हदों भी इतनी स्वतंत्रता, इतनी गल क्षमा करनी। इस देश देश से मैं हूं घूम करके जो देखा कि एक तो इत्थे दे दरियावां दे कंडे ते बन कोई नहीं ना, ते राजनीति दे आले दुआले भी कोई बनेरा कोई नहीं। इत्थे दे दरिया जद हड़ ते आंदे ने शहरां नूं रोड़ छड़दे ने, इत्थों दी राजनीति जद हड़ ते आंदी अकाल तख्त नूं रोड़ के लै जांदी है। और ये हजारां बंदियां नूं अपने थले लिताड़ के जो है लंघ जांदी है। बेकाबू राजनीति, बिल्कुल बेकाबू। और गजब की गल यह है कि इत्थे यह भी आखण की इजाजत नहीं कि इत्थे दरिया हड़ पे आया, खेतियां डुब गई, पिंड गर्क हो गए, शहर तबाह हो गए, यह भी किसी को इजाजत नहीं। किसी वक्त इस तरह के संकीर्ण माहौल नूं वेख के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा सी, ये कैसा जुबान बंदी है तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। इतों की साड़ी जुबान तरस गई गल करन, जिड़ा गल करे उसते एनएसए ला दो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ला दो, और झूठ चारों पासे पनप आया। झूठ को सारे साधन, गजब की गल है मौजूदा राजनीतिक दे मूंह च झूठ, हाथ दे च बंदूक, इंज झूठ चलता है। हाथ दे च बंदूक है, मूंह च झूठ है, ते सच सच दे ते किसे किसे थां होंठ भी सी दिते गए ने। सच उहदी जबान भी कट दिती गई है। इस देश दे च जिसनू कहिंदे ने कि अहिंसा के नाल आजादी प्राप्त की असी। मैं पिछले थोड़े दिन होए एक सर्वधर्म सम्मेलन में बोलने का मौका मिलया।

गोली चलाई है, डुब के मर जाना चाहिए इन्होंने, शर्म वाला। गजब की गल है कि वह विदेशी ने जाबर सन, चलो इस देश नूं लुटन आए सन, देश दे ते जाबराना उन्हां दा कब्जा सी, लेकिन 200 साल दे राज विच इतनी गोली नहीं चलाई, इतिहास गवाह है। और 200 साल दे राज विच इतने बंदे नहीं कतल कीते, 35 साल विच इन्हां चरखे कत्तण वालिआं ने, वर्त रखण वालिआं ने, अहिंसावादियां ने ए कुछ कीता, ए कारनामे कीते 35 साल विच। आंकड़े जो है सामने ने, आसाम विच, बंगाल विच, कश्मीर विच, पंजाब विच, तमिलनाडु विच, गुजरात विच, महाराष्ट्र विच, ऐसा केड़ा सूबा है जिथे इन्हां अहिंसावादियां ने कतलेआम नहीं कीता। और पौंडी राजनीति ने खिमा करनी, खून नहीं बहाया। करीबन करीबन हर प्रांत विच इन्होंने जुल्म ते तशद्दुद दी अपने ढंग नाल जो है छाप इन्होंने लाई है। जो थोड़ा अरसा इत्थे पहले अमृतसर विच महान घिनौना कारनामा इन्हां अहिंसावादियों का होया, बार बार मैनू तो अहिंसावादी कहंदियां भी शर्म आउंदी है, भई यह अहिंसावादी ने, भी असी हिंसा करनी नहीं, बापू ने अहिंसा से ये आजादी प्राप्त की है, अवल तो असी इसनू भी नहीं मनते, यह अहिंसा नाल आजादी नहीं प्राप्त हुई। इत्थे भगत सिंह जैसे अपना खून ना डोलदे, इत्थे बेशुमार सिंह फांसियां ते ना चढ़दे, खिमा करनी ये देश ते अज भी गुलाम होना सी, आजाद थोड़ी होना सी। निरी फोकी अहिंसा नाल जो नहीं, जब पाकिस्तान या चाइना चढ़ के आया सी, फिर अहिंसा नाल बचांदे, इस नूं वर्त रख के बचांदे, या चरखे कतण वाले नूं अगे कर दे, ये कोई चरखे कतण नाल देश बचे है, कोई वर्त रखण नाल देश बचे है? नहीं, इत्थे बंगालियां ने अपना दिमाग लड़ाया, पंजाबियां ने अपना खून बहाया ते देश आजाद होया। पर गजब की गल यह है कि दिमाग लड़ाण वाले रुल गए, खून बगाण वाले रुल गए, ते चरखे कतण वाले सिंघासणा ते जा बैठे। बदकिस्मती है जी, है फोके चरखे कत्तण वाले, फोके वर्क रखण वाले, ते फोकियां अहिंसा दियां गल्लां करण वाले। दो चार गल्लां होर भी मैं थोड़े नाल इस वक्त करनियां ने, ओए ते दार्शनिक ऐसा कहिंदे ने दूर दृष्ट बंदे, ते सानू इस वक्त बड़ी दूर दृष्टि तो कम लेना पैणा है, क्योंकि एक पासे खाई होवे, एक पासे खड़ होवे, ते बड़ी सावधानी नाल चलना पैना है, नहीं तो ऐसा होगा कौम खड़ चली जाएगी, खाई चली जाएगी, ते मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंच सकांगे। बहुत वड्डी सावधानी चाहिए, इस वक्त इतनी मर्ज कर दूं, बहुत गहरी खाई एक पासे और बहुत गहरे खड़ ने, इन्हां दा मैं जिक्र फिर दोबारा करांगा, लेकिन खतरे चाप ऐसे रस्ते देच जो संकीर्ण है, ते खड़ ते खाई दोनों पासे ने, तो संभल के चलना है, बस इतनी गल है। अभी नक कटण की कोशिश की थी, या इंज कह लो किसी की पत्नी चुकने आना, अगले की नक ही कटनी है, इंज बदला लिया तो क्षमा करनी, ये दिशरावण निर्दोष है कि किसी आम बंदे की भैन न भी कोई इस तरीके दे नाल व्यवहार करदा, उन्हें भी आपे तो बाहर होना सी, उते राजा सी, उन्हें ते कम करना सी। लेकिन फिर रावण नूं दुष्ट जालम जावर ऐसा क्यों आख्या गया? हार गया, बस इन्नी गल। और मैं अर्ज करा, तुसी इतने सारे बैठे हो, ते किसी हिंदू दार्शनिक नूं भी कह देना सही, अगर इत्थे स्रोता दे रूप च बैठा होवेगा तो अपनी दूरदृष्टि नाल सोचेगा तो बिल्कुल सही है। अगर रावण जित जांदा इस देश का, भगवान रावण होना सी, राम नहीं होना सी, इन्नी मैरस कर देना। पूजा रावण की होनी सी, राम की नहीं होनी सी हिंदू जगत विच, पर राम की क्यों होई? राम जित गया, रावण हार गया, तो हारे को हर नाम, हारे की मां कौन पकड़े? कलम दे धनी, जबान दे धनी, फिर ओदी उपमा कर दें जो जित जांदा है, पर करमा लोकी ओदे आले दुआले कर दें जो जित जांदा है।

लिए गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पहला अक्षर एक है और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान है कि हे प्रभु तू एक है अनेक है अनेक है फिर एक है। एक मूर्त अनेक दर्शन चीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। तो ये मंगला चरण है शब्द उते एक ओंकार। ओंकार शब्द तीन शब्दों का जोड़ है अकार उकार मकार उत्पत्ति करने वाला पालना करने वाला नाश करने वाला। एक ओंकार एक तो उत्पत्ति हो रही है पालना हो रही है नाश हो रहा है। वो जड़ा एक ओंकार है वो सत्य है सदैव है कायम दायम है हमेशा। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। वो जो एक है उसको उत्पत्ति हो रही है पालना हो रही है नाश हो रहा है ओंकार है। वो जड़ा ओंकार है वो सत्य है और वो जड़ा सत्य है वो गुरु है। एकाग्रता प्रदान करनी वो गुरु है चानना देने वाला है प्रकाश देने वाला है और वो जड़ा गुरु है वो प्रसाद है दयालु है बख्शिंद है कृपालु है। तो ये है मंगलाचरण। और अगे आप वाक श्रवण करो एक दफा प्यार ना लाखो सतनाम। अज का जिहड़ा पावन पवित्र वाक अमृत वेले आया है वो भी उस हरिमंदर साहब उस अमृत सरोवर के संबंध च आया है जिस दी वक्त दे सताधारियां ने रज के बेहुरमती की थी है। जिसने रज के बेअदबी की थी रामदास सरोवर नाते। इतनी गल ते स्पष्ट है कि अमृतसर नूं गुरुआ ने वसाया गुरुआ ने बख्शिश दी गुरुआ ने पवित्रता दी और इस सारी दुनिया नूं सहजे सहजे पता चल रहा है कि सिख जगत दे कितनी कशिश अमृतसर लई क्यों है। सिख जगत दे अंदर तड़प इतनी अमृतसर दे लई क्यों है और मर मिटण दी भावना इतनी क्यों है। मैं ते इतनी अर्ज कर रहे हैं जिहड़े शहीद हो गए उत्थे काबू च आए चारों पासे घिर गए पर खिमा करनी ते खुल दिली नाल आजादी दे नाल शहीद होना आए ने। ते जिस कौम दे इस तरह दी खुली दिल नाल आजाद होण जो है शहीद होण लई आन खिमा करनी उस कौम नूं गुलाम नहीं रखिया जा सकदा। जीवदी है जीवदे मनुख की यह पहचान है उसके अंदर गर्मी आती है। मैं फिर अर्ज करा मुर्दे की की पहचान ठंडा हो गया हाथ पैर ठंडे हो गए तलियां मलदे ने गर्माश आवे गर्मी आवे तो मैं अर्ज करा तलियां मलन की लोड़ ही नहीं इतने गर्मी मौजूद है इतने जिंदगी मौजूद है। सतगुरु का दिता हुआ वाक सतगुरु के दिते हुए वचन उन्होंने सूरबीरता अंदर खालसे दे इस ढंग की पैदा की हुई है। ये जीवदी जागदी कौम है कबरां नूं गुलाम रख सकते हो मुर्दियां नूं गुलाम रख सकते हो जीवदी जागदी कौम नूं तुसीं गुलाम नहीं रख सकते। ये हकीकत है बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। तो पावन पवित्र वाक आया रामदास सरोवर नाते राम दे दासां दे सरोवर दे भाव गुरु रामदास जी महाराज का बनाया हुआ है सरोवर ते राम दे दासां दा सरोवर उहदे च जद इशनान कीता उहदे जो है नहाए। हां जी अज तक जितने पाप कमाए सन ते पाप कहने किसनू कहोगे पाप पाप ते पुन दी बड़ी चर्च है। ते मैं करा इस्लाम जिसनों पाप कहंदा हिंदू धर्म उसनों पाप नहीं कहंदा हिंदू धर्म जिसनों पाप कहंदा उन्हों ईसाई पाप नहीं कहंदे ईसाई जिन्हों पाप कहंदे उन्हों यहूदी पाप नहीं कहंदे। हजरत ईसा शराब पी लेंदे सन गऊ दा मांस मुहम्मद साहब खा लेंदे सन मछली स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है खा लेंदे सन मैदान जंग विच महाभारत की जंग विच श्री कृष्ण झूठ बोल लेंदे सन और उन्हें कहा युधिष्ठिर कह दे अश्वत्थामा हथो मर गए। हुण किहनूं पाप आखोगे की पाप है किधरे कोई अवतारी पुरुष झूठ भी बोल लेंदा किधरे कोई गऊ भी खा लेंदा किधरे कोई मछली भी खा लेंदा किधरे कोई शराब भी पी लेंदा ते कहने धर्म ते ओही है जिहड़ा निर्मल कर्म ते खड़ा होवे। ते जेड़ा धर्म है निर्मल कर्म से नहीं खड़ा वो धर्म पखंड है। सतगुरु ने आप कह दिता है कर्म है